0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోస్ లో సమయం 6:02. ఇప్పుడు హిందీలో వార్తా ప్రసారం.
1: बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता

बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ డాట్ ఇన్ ద్వారా May 10 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

0: ఉండాలి.
1: జనాభా గణన మొదటి దశలో ఇండ్ల జాబితా మరియు ఇండ్ల గణన జరుగుతుంది. దీని ద్వారా మీ ఇండ్ల మరియు కుటుంబ వివరాలు నమోదు చేయబడతాయి. రండి, మనందరి భాగస్వామ్యంతో దీన్ని విజయవంతం చేద్దాం. వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా మరో అడుగు ముందుకు వేద్దాం.
2: पता है न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान.
3: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण.
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
3: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध. डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
4: జనరంజని శ్రోతలు కోరిన సినిమా పాట కార్యక్రమం ఉన్నాయి. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోస్ లో సమయం 8 గంటలుగా వస్తుంది. మరికొద్ది సేపట్లో హిందీలో వార్తా ప్రసారం.
5: और अब मुख्य समाचार. शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार. लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त. अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान. और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा. अब समाचार विस्तार से. शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा.
6: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी. शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे. नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा. संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता.
5: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया. विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी. कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है.
7: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है. हमने बंगाल के अर्थद्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें.
5: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी.
7: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है.

0: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर आज

0: इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा

0: मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स

0: सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एकीकरण।
1: अब चाहे टेली लॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
0: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: చిత్రగీతాలు కార్యక్రమంలో మరో అద్భుతమైన పాట ఇది. పి సుశీల బృందం ఆలపించారు బబ్రువాహన సినిమాలో.

ये छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम फिर से हाजिर हो गए चित्रलोक कार्यक्रम में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, आज है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। आपने गोरा, चूखेरवाली, घरे बाहर जैसे कई उपन्यास लिखे। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है साथियों जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास, नाटक या गीत। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। साल 1913 में उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।

0: परिणीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थीं, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का मीठा संगीत और इसमें बात थी पीयू बोले, बहुत ही प्यारा गाना था ये। साथियों, ये पक्षी, इनकी परवाज, इनकी चहचहाहट, इनका सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। सच मानिए, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारिए ना, जिंदगी में चारों ओर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब एक संदेश की ओर बढ़ जाते हैं।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक उलड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: जाने के

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक मखमली आवाज की।
1: बेचैन नजर

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाईं। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहाँ आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: రాజ్కోటి సంగీత శారథ్యంలో వేటూరి రాసిన పాట విన్నారు. ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం చిత్ర ఆలపించారు శత్రువు సినిమా నుంచి.
1: पता है न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान.
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण.
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध. डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित

आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की

0: साथियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया। इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सके। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है डाक।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं।

0: मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा अब आज्ञा दीजिए।
1: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए, कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
0: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
0: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मुनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जाने चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है?
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहाँ आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह

0: रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
0: सभी पत्रों पर मुहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना, आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई शिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे, अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: शिंगारम, शिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम श्रृंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम, उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो, लेकिन शायद तुम शिंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा?
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नामो निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: सिंगारम ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं, तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
4: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो

0: तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ। देखना ये श्रृंगारम।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए, 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह भगवान की कैसी लीला है। अच्छा आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ, मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है, आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसी ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती
0: हैं। माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा न बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक खाने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि

0: चिट्ठी है?
1: आपके लिए तो नहीं है।
0: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है?
1: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
0: वो मेरी नानी लगती है ना?
1: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
0: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
1: जी वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
0: मेरा नाम नीला है।
1: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा, नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है या?
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा, ये बात है।
0: छोड़ मैं अभी।
3: जहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे, दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत, बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों धोए कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
2: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई, सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
4: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
4: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं, मैं जाती हूँ। समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
4: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली

अरे सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की

0: ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है। ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं। नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
0: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: है ये खांसी? आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियाँ दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन

0: को ढूंढने के लिए तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था, जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा। हमारी मेहमान कौन है तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुट जाऊंगी
0: जी।
1: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे
0: जी,
1: बहुत
0: जी।
1: अच्छा लगता है।
0: हाँ।
1: और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक तो मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी,
1: जी
0: तो हम तब से बात शुरू करें
1: जी।
0: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
1: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
0: जी।
1: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
0: हाँ।
1: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे,
0: जी,
1: ये
0: जी।
1: मेरा नेचर नहीं था।
0: हाँ।
1: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं
0: जी
1: उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं,
0: जी
1: राजा राम शिंदे जी थे।
0: हम्म।
1: तो मैंने मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: वाह।
1: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें फिर नाम क्या रखे।
0: हाँ
1: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
0: जी।
1: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए, बहुत
0: हाँ।
1: यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम,
0: जी
1: क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
0: वाह वाह।
1: जी,
0: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
1: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
0: जी
1: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा
0: बिल्कुल।
1: के दिन,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
0: क्या बात है,
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
1: मुहूर्त माना, तो
0: क्या बात
1: हमारे
0: है।
1: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे
0: हाँ
1: जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है,
0: जी
1: गुड़ी
0: जी
1: पाड़वा।
0: क्या बात है।
1: जी
0: ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
1: हाँ,
0: थी।
1: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
0: जी जी
1: मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कोणा से, वो जो गाना है
0: जी
1: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कोणा से। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
0: जी
1: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
0: अच्छा
1: बोली
0: अच्छा
1: तू तो मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ
0: ओ
1: जरूर गाओगी।
0: क्या बात,
1: बहुत मजा आया उस
0: वाह
1: दिन,
0: वाह।
1: बच्चों से लेकर।
0: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
1: जी
0: हुआ,
1: जी
0: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो वो फेहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
1: लिस्ट
0: आपको
1: बनाई
0: याद
1: थी,
0: है?
1: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
0: जी
1: क्या अजीब दास्तां है ये,
0: हाँ हाँ
1: इस तरह
0: हाँ
1: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
0: बिल्कुल। जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
1: हाँ जी
0: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
1: हाँ जी
0: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
1: जी
0: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
1: राइट।
0: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
1: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
0: हाँ
1: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
0: ओह क्या बात
1: आई
0: है,
1: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
0: अलग अलग
1: गाना।
0: गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे इसे
1: ऐसे मैं
0: गाया है।
1: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
0: हाँ
1: अलग अलग
0: हाँ
1: गायिकाओं के गाने हुए,
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: झलक
0: हाँ
1: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
0: जी
1: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: मुंबई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में,
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे, सब ऐसे।
0: जी, जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर के सब,
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।

0: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा।
0: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए जाना हुआ।
1: हाँ।
0: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
1: जी जी।
0: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा।
0: जी जी। तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
1: अच्छा।
0: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी।
1: अच्छा।
0: और हाइट भी अच्छी थी
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
1: ये महिला विश्वविद्यालय
0: महिला नहीं वो स्कूल की बात कर रही हूँ, महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
1: अच्छा।
0: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
1: अच्छा,
0: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर
1: सके?
0: जरूर।

0: वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती
0: पुरुष पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं, और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
1: इस
0: नाटक में निभाई थी।
1: हाँ जी।
0: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला, और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहां के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना, और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, कभी पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
0: हाँ।
1: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक का एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक, और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है।
0: हाँ।
1: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने
0: जी,
1: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनजीटी में।
0: हाँ।
1: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई,
0: और
1: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
0: हाँ।
1: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक झिझक होती है।
0: हाँ।
1: कि जाओ कि नहीं, तो

0: वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी
1: अच्छा।
0: बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
0: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? मैंने चलेगी
1: दौड़ते
0: जाऊंगी, कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
0: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी,
0: उनका यहाँ वहां इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब

0: मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से. और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी जी,
0: उनका यहाँ वहां इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने. ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे. बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला.
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को. तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं.
0: मराठी में गाने थे
1: जी जी.

0: अफ्रीके का, उनके तो क्या एक किस्से में. सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए. तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा. मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए. तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी. तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम. तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके. अच्छा। तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना. तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था.
1: अच्छा।
0: दम मारो दम. तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
1: जी, जी.
0: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे.
1: अच्छा.
0: तो वो कहा मैं कहा फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको जो मैंने नोटिस किया उनको.
1: जी, जी.
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे.
1: जी, जी.
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा. और एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर. मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के ये लोगों को सामने से सुनते बैठू. बहुत ही भाग्य था मेरा इस बार. रफी साहब को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
0: ड्यूएट नहीं गाया.
1: नहीं गाया. अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत सुने तो कौन सा होगा वो?

0: लिए।
1: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
2: घूमी
1: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
2: नहीं, सबसे
1: आपने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
2: ज्यादा तो जी
1: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
2: गए। हाँ। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
1: जी
2: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
1: जी, जी।
2: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया।
1: अच्छा।
2: ईस्ट

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह ये है कि लोगों की टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां है,
0: जी
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के, इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए, अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू, एक छोटा छोटा
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में,
0: अच्छा
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो हो
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो, वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है,
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी कभी
0: अच्छा
1: अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी जी
1: साथ गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ,
1: है।
0: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
0: हाँ हाँ
1: याग्निक का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगा कर है शायद इस फिल्म का
1: दम लगा
0: गाना
1: के
0: है।
1: है शायद
0: जी
1: उसका,
0: जी गीत
1: पता
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: हाँ,
0: हारमोनियम पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें हाँ। प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं किसी,
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना
1: है? तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था,
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या
0: जी,
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप
1: नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में
1: गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौबड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक
0: जी,
1: लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकुते, फिर अपने गले से नहीं है तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, ओरिजिनल उनका गाके फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ,
1: नकल नहीं आती उसमें
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी जी,
1: वो क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र, तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्नदा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है, जो लाइट

0: म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जी जी,
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है,
1: हाँ।
0: तो फ्लैट लगेगा और
1: जी,
0: भाव
1: जी।
0: नहीं आएंगे उसमें,
1: हाँ।
0: तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है, किसी के आवाज में। तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपने आवाज में,
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसा ऐसे आघात करते जाओ, और
1: अच्छा,
0: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
1: ओ,
0: रियाज करके,
1: क्या बात।
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला
1: हाँ
0: कि ज्यादा नहीं करना,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में बहुत ही।
1: अच्छा।
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: हाँ
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी
0: बांबू चा वना च ज झ बहुत से, बांबू चा वना झऱ्या चा काठी
1: हाँ
0: येशील सजणे सजणे
1: हाँ
0: माझाच पाठी,
1: बिल्कुल,
0: ये
1: उनके
0: लाइन
1: लिए
0: थी।
1: टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत
1: रहा वो।
0: बहुत 3 बार हुआ, ठीक 4 बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो
1: जी जी
0: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
1: हाँ हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: बराबर ये
1: नुक्ता लगा
0: करके
1: के।
0: लाइन
1: क्यों
0: में,
1: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें।
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी,
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 जिसे मॉड्यूलेशन फोर कि उसके कम करना, उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है।
1: जी,
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला झुलवित राहील पापा पापा तुला नी मला नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो
1: और
0: क्या
1: वाह वाह, मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा
0: क्लासिकल
1: जाने जाते
0: सिंगिंग,
1: हैं,
0: जी जी जी
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है,
0: हाँ,
1: मगर प्योर क्लासिकल
0: उनका
1: गाने
0: प्योर
1: जिनको कहा जाए,
0: क्लासिकल
1: जो
0: बहुत
1: लाइट
0: अच्छा,
1: कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे,
1: जी बिल्कुल
0: क्लासिकल
1: बिल्कुल,
0: गाने हैं ऐसी बात नहीं,
1: बहुत से दिए।
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या
1: जी
0: भारीपन था आवाज
1: जी
0: में
1: जी जी
0: वो उस पे बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी जी
0: मुझे उनका ये गाना बहुत पसंद है, ऐ मेरे प्यारे वतन,
1: वाह,
0: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना था।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखा,
0: बहुत ही संजीदा गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है। तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: जख्म,
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
2: उस वक्त फोन बीन ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: हाँ,
2: वो दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी,
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
1: जी।
2: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं, कभी कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के, उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
2: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोवर्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उनका जाते हैं।

0: उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते
0: उन्होंने
1: हुए
0: गाते देखा
1: है।
0: तो उन्होंने तो वो भी गाती थी और लोग पसंद भी करते थे। ऐसे नहीं कि कैसा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात है।
0: बड़ी बेटी एकदम, ये हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
0: हाँ, ऐसा हम लोग डुएट भी गाते थे।
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम, उस पे डांस भी होता था मेरे शो में। ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने, तो वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। हाँ, फिर उसी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो, पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद आता।
1: क्यों नहीं यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं?
0: अरे बाप रे।
1: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंग किया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत।

0: की ताजगी।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
3: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
4: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: सुनिए,
8: कहिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी।
8: कहिए ना।
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
8: शुक्रिया, शुक्रिया।
9: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे।

ये आकाशवाणी है। अब आप वाजिदुल्लाह खान से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत के शहरों और टाउन्स में बढ़ती हुई आबादी के तनासब से बुनियादी ढांचे को तरक्की देने की जरूरत है। उन्होंने वादे किया कि उनकी हुकूमत हिंदू और मुसलमानों को अपनी दोनों आंखों की तरह समझती है और अखिलेश की फलाह बहबूद के लिए पूरी तरह। वज़ीर आज़म मोदी कल हैदराबाद का दौरा करेंगे।

अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल हैदराबाद का दौरा करेंगे। तीसरी बार वज़ारत-ए-उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद वो पहली मरतबा रियासत का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने राव की क़यादत में हुकाम की जानिब से सख्त हिफाजती और इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरे के दौरान तकरीबन 8,000 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इन अहम प्रोजेक्ट्स में ज़हीराबाद स्मार्ट सिटी, कौमी शाहराहों के काम और IOC टर्मिनल शामिल हैं। शाम के वक्त वो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। दरियास्ता BJP लीडर और सिरपुर के MLA हरीश बाबू ने एक बयान में कहा कि अपने हल्के इंतखाब से वो इस जलसे में शिरकत करने वालों की सहूलत के लिए ज़िला आसिफाबाद के कागज़नगर रेलवे स्टेशन से खसूसी ट्रेन का इंतज़ाम किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत के शहरों और टाउन्स में बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से बुनियादी ढांचे को तरक्की देने की ज़रूरत है। आज सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के दौरान उन्होंने हुकाम को इस सिलसिले में हिदायत दी। उन्होंने रियासत की हम जहद तरक्की के लिए तेलंगाना राइजिंग 2047 मास्टर प्लान के इजरा का तस्करा किया। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि हैदराबाद को सिग्नल फ्री सिटी बनाया जाए और अंडर पासिस, सरफेस और एलिवेटेड जैसे तीन सतही निज़ाम को मुतारफ़ करवाया जाए। उन्होंने बताया कि पार्किंग के मसाइल पर काबू पाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम कायम किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि हैदराबाद में आलूदगी पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके हिस्से के तौर पर RTC में इलेक्ट्रिक बसें मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। इस अजलास में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन M. श्रीनिवास लू रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और मरकजी और रियासत के आला हुकाम ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाजे किया है कि उनकी हुकूमत हिंदू और मुसलमानों को अपनी दोनों आंखों के मानंद तसव्वुर करती है और अकलियतों की बहबूद के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। नामपल्ली हजाऊ से आज़मी नहज की बसों को रवाना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि आज़मी नहज के हवाई जहाज़ के ईंधन के अखराजात का बोझ रियासती हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। उन्होंने आज़मी से

सियासत की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की अपील की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वोटर लिस्टों की तरामीम के नाम पर बीजेपी की साजिशों को रियासत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तकरीब में वजीर अकलेती बहबूद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन वैसी, मोहम्मद अली शबीर शफीउल्ला और दीगर कायदीन मौजूद थे। कबल अजी महकमे अकलेती बहबूद के जायजा इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने हुकाम को हिदायत दी कि अकलेती तलबा के लिए मुतहदा अजला के मराकज में खसूसी डिग्री कॉलेजेस कायम किए जाएँ। उन्होंने ताकीद की कि इन कॉलेजों में महारतों की तरक्की और मसनवी जहानत की तालीम पर तवज्जो दी जाए ताकि रोज़गार के मौके में इजाफा हो सके। उन्होंने आइम्मा व मौज़िनीन के एजाजी की बाकायदगी से अदायगी और कब्रस्तानों के लिए अराजी मुख्तस करने के अहकाम जारी किए। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के तहत तमाम मजाहब की इबादत गाहों की तामीर के सिलसिले से भी वजीर अजहरुद्दीन और आला हुकाम को हिदायत दी गई। इस इजलास में अकलीती तलबा के लिए मराहत और आटो रिक्शों की रेट्रोफिटिंग जैसे कलीदी फैसले भी लिए गए। रियासत में जारी मरदमशुमारी के सिलसिले में आवाम में शऊर बेदार करने के लिए हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ इजलासों और नुमाइशों का अहतमाम किया जा रहा है। इन प्रोग्रामों का मकसद शहरियों को मरदमशुमारी की अहमियत से वाकिफ करवाना और इस अमल में उनके ताउन को यकीनी बनाना है। तमाम मुतालिका अहदेदार फील्ड सतह पर जाकर आवाम को दुरुस्त मालूमात की फराहमी और इंदराज के तरीक़ेकार के बारे में बेदारी फराहम कर रहे हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी अभिलाष अबिनो ने एक अलामिया में बताया कि रियासत भर में इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात रवां माह की 13 तारीख से 21 तारीख तक मुनक़िद होंगे। उन्होंने वजाहत की कि फर्स्ट ईयर के इम्तहानात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जबकि सेकेंड ईयर के इम्तहानात दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक लिए जाएंगे। उन्होंने इतला दी कि प्रैक्टिकल रवां माह की 22 और 25 तारीख को होंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में किसानों को अपनी धान की फसल तोलने के अमल के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मकई की खरीदारी के लिए थैले फराहम करने में भी नाकाम हो चुकी है। मरकजी वजीर बंडी संजय पर शदीद नुकताचीनी करते हुए KTR ने कहा कि उन्हें सिर्फ फिरखवराना सियासत आती है और वो अवामी मसायल बिलखसूस किसानों की बहबूद से पूरी तरह नावाकिफ़ हैं। राजन्ना सिलसिला ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी कारकुनों के अजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि BRS में जल्द ही नई कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी जिनमें नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर मौके फराहम किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने रियासत भर में पार्टी की रुकने साजी की मुहिम शुरू करने के अज़्म का भी इजहार किया है। साबिक वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत मेडीगड्डा के 3 सुतूनों की मरम्मत करने से इसलिए डर रही है कि कहीं इसका सेहरा साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को ना मिल जाए और इसी खौफ के बायस हुकूमत तुम्बीडी हट्टी की तामीर के नाम पर एक नए धोखे का खेल खेल रही है। सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी, वज्रा उत्तम कुमार रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा राव और विवेक वेंकट स्वामी तुम्बीडी हट्टी के मामले पर लाइलमी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तंजिया कहा कि चीफ मिनिस्टर एलमपल्ली को पानी लाने की बात कर रहे हैं जबकि जुपल्ली तुम्बीडी हट्टी से ग्रेविटी के जरिए और उत्तम कुमार रेड्डी सुंदेला को पानी लाने के दावे कर रहे हैं। ये आकाशवाणी है। आसिफाबाद की जिला SP नितिका पंत ने एक बयान जारी करते हुए वाजे किया कि जिले में घरेलू मुलाजमीन, बावर्चियों, सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवरों की तफसीलात मुकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाना लाजमी है। उन्होंने मकानात और कमरे किराए पर देने वाले मालिकीन को मशवरा दिया कि वह किराएदारों की मुकम्मल तफसीलात पहले ही मुकामी पुलिस को फराहम करें और उनकी जाँच करवाएं। SP ने बताया कि मुलाजमीन के आधार कार्ड, मौजूदा रिहायशी पते, तस्वीर, मोबाइल नंबर और दीगर ज़ाती मालूमात पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने से मालिकान को हिफाजती मसाइल से तहफ़ मिल सकता है। उन्होंने ख़ासतौर पर नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को काम पर रखने से पहले उनकी मुकम्मल तस्दीक करने की भी ताकीद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि मालिकीन अपने घरों में काम करने वाले अफराद की मालूमात फराहम करके जराइम की रोकथाम में पुलिस के साथ ताउन करें। ज़िला कलेक्टर जनगांव संदीप कुमार झा ने बताया कि रवां माह की 13 से 21 तारीख तक मुनक़िद होने वाले इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए ज़िला जनगांव में 12 इम्तिहानी मराकज़ का क़ायम अमल में लाया गया है। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि साल अव्वल के इम्तहानात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जबकि साल दोम के इम्तहानात दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक़िद होंगे।
ज़िला कलेक्टर महबूबाबाद स्नेहा सबरीश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मर्दम शुमारी में हिस्सा लेना हर शहरी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत को आवाम की समाजी और माशी सूरत हाल को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने वजात की कि मुतल्लिक अमला घर घर जाकर जो मालूमात इकट्ठा करेगा, इसमें मजमूई तौर पर 34 सवालात शामिल।

0: ہوں گے اور عوام کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلومات کو مکمل طور پر راز میں رکھا جائے گا۔ راجہ ناصر ضلع مرکز کے امبیڈکر چوراہے سے بدکما گھاٹ تک آج ایک میراتھن کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ضلع کلکٹر اور پرنسپل سینسس آفیسر گریما اگروال نے ہری جھنڈی دکھا کر کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی جامع اور درست منصوبہ بندی کے لیے مردم شماری کے اعداد و شمار انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اسی لیے تمام شہری اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کلکٹر نے مزید بتایا کہ اس بار پہلی مرتبہ خود شماری کا طریقہ کار متعارف کروایا گیا ہے، جس کے ذریعے خاندان کے افراد اپنی تفصیلات بشمول مذہبی معلومات خود درج کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے موبائل نمبرات کے ذریعے تفصیلات درج کریں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کے شہروں اور ٹاؤنز میں بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل حیدرآباد کا دورہ کریں گے، اس موقع پر وہ تقریباً 8,000 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے۔ کے ٹی آر نے الزام لگایا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں سے دھان کی خریداری کے لیے تھیلوں کی فراہمی کے موقف میں بھی نہیں ہے اور مردم شماری کے سلسلے میں شعور بیدار کرنے کے لیے آج ریاست بھر میں بیداری ریالیاں نکالی گئیں۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है।

शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRY ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। एंग्जायटी इंसान के लिए घातक है। ये मस्तिष्क को चोट पहुंचा दे सकती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंग्जायटी का होना बहुत आम बात है। रिश्ते में विश्वास की कमी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, असुरक्षित महसूस करना, लड़ाई झगड़े, गलत व्यवहार, अनियमितता, समाज से दूर रहना, अपनी ही जिंदगी में लीन रहना, ये सब बेचैनी के कारण है। एंग्जायटी तो हर किसी को होती है, परंतु इसे बीमारी के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे तो ये वाकई खतरनाक है। एंग्जायटी अवसाद, निराशा व दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाज किए जाने पर अवसाद एंग्जायटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। यह घबराहट के दौर पैनिक अटैक होते हैं। एंग्जायटी के दौर में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी या जी मचलने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंग्जाइटी कहते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित स्तर तक ही किया जाना चाहिए। सीमा से अधिक विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भी विचार आपको परेशान न करे तब तक बस सामान्य है, परंतु जब कोई विचार या सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तब यह चिंता का विषय है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एंग्जायटी के सामान्य लक्षण ये है दोस्तों: बेवजह की चिंता करना, हृदय गति में बढ़ोतरी होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, लिफ्ट वगैरह में जाने का डर कि वापस नहीं निकल पाएंगे, जुनून की हद तक सफाई करना, बार बार चीजों को सही करते रहना, जीवन से निराश हो जाना, ये सोचने कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार देगा, पुरानी बातों को याद करके बेचैन होना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना,

फालतू विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण के बेचैनी महसूस करना, गैर जरूरी चीजों के प्रति बहुत लगाव होना, जल्दी निराश हो जाना, किसी चीज के लिए अनावश्यक आग्रह करना आदि। दोस्तों, इस एंग्जाइटी के कई प्रकार हैं, जैसे सामान्य एंग्जाइटी, अनियंत्रित जुनूनी प्रकार, सामाजिक चिंता प्रकार, डर या फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर एंग्जाइटी। ज्यादा चिंता करने लगना, छोटी से छोटी बात को ज्यादा सोचना, और ऐसा आपकी जिंदगी में बार बार होना एंग्जाइटी का ही लक्षण है। इसके चलते आप खुद को महत्वपूर्ण कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य का बोझ, तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन अथवा प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी अविश्वसनीय घटनाएं आदि। जिन व्यक्ति के परिवार में मानसिक विकारों से जुड़ी समस्याएं होती रहती है, उन्हें चिंता विकार की समस्या जल्दी हो सकती है। जैसे ओसीडी विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज या हृदय रोग आदि। अवसाद से पीड़ित लोग भी एंग्जाइटी की चपेट में आ सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा हो, उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है। इससे कामकाज से जुड़ा तनाव बढ़ने लगता है और फिर एंग्जाइटी का जन्म होता है। पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी व तकलीफों को भूलने के लिए बहुत से लोग शराब, नशीली दवाएं और दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं। यकीन मानो, कभी भी ये चीजें एंग्जाइटी का इलाज नहीं हो सकता है। नशे का इस्तेमाल समस्याओं को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को पूर्णतः के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब ये पूर्णतः की जिद सनक बन जाए तो ये एंग्जाइटी के अधीन आ जाते हैं। यही जिद उन लोगों को बिना वजह की घबराहट और चिंता को जन्म देती है। जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसका सहानुभूति तांत्रिक तंत्र बहुत तेज काम करने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह सूखना शुरू हो जाता है। घबराहट हो जाना, ज्यादा कुछ सोचने पर असहजता और घबराहट होने लगती है, जो कि एंग्जाइटी का ही एक लक्षण है। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे पहले कि ये बड़े, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जब हमें ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सामान्य फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से हो रहा है। यदि इस थकान के कारण सिरदर्द या घबराहट हो तो ये एंग्जाइटी का एक लक्षण है। ज्यादा चिंता करने से नींद नहीं आती और तनाव बढ़ने लगता है। शोध से पता चला है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती है और चिंता से याददाश्त पर भी असर पड़ता है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। वो बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, जिससे उनके सोशल लाइफ पर असर पड़ता है। मांसपेशियों में तनाव रहने लगता है। व्यक्ति को चिंता के दौर पड़ने लगते हैं। वो खुद को हर जगह असुरक्षित पाता है। एंग्जाइटी का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति सही से सो नहीं पाता, नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाता है। नींद में सोते हुए गिर जाना या आधी रात में जाग जाना, ये सब भी एंग्जाइटी के लक्षण है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोगों को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और पसीना आने लगता है। जिन लोगों को ज्यादा बेचैनी होती है, वो सामाजिक स्थितियों से डरते रहते हैं। उन्हें समाज में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है कि समाज उन्हें और उनकी बातों को अहमियत नहीं देती है। एंग्जाइटी से पीड़ित इंसान कभी भी संतुष्ट का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे सदा दुख का एहसास होता रहता है और वो संतुष्ट जीवन का आनंद लेने में असक्षम होता है। व्यक्ति को चिंता किसी भी चीज से किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो यह अवसाद का रूप ले सकती है और पीड़ित व्यक्ति को घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं। हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एंग्जाइटी के एक भी लक्षण से आप, आपके परिवार का कोई व्यक्ति या जान पहचान का कोई इंसान पीड़ित है, तो सबसे अच्छा यही है कि इलाज के लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट मेडिकेशन और काउंसलिंग से किया जा सकता है। एंग्जाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम स्तर मानकर बैठ जाए। हिम्मत करके समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये एंग्जाइटी आपसे जरूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया।

एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने MIRV सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO, भारतीय फौज और सनत की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी दो रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले NDA सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और सामाजिक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापसता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत यह कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। CBI के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। CBI ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और LIC की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधही के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेड चुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेड चुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS
مسلح افواج سے متعلق آفتھلمالوجی اپڈیٹ 2026 کا افتتاح کیا. اس دو روزہ کانفرنس کا انعقاد آنکھوں کے امراض کی کل ہند انجمن کے ساتھ اشتراک میں نئی دلی کے آرمی ہاسپٹل کے محکمہ امراض چشم کی جانب سے کیا جا رہا ہے.

इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहिरीन और दीगर सिविलियन माहिरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है, और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आब नाए हुरमुज और उसके अतराफ ताजा वाकयात के पस मंजर में ये बयान सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेज के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आईएमडी ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वीं मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी, मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदिराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सपो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजश्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असेंबली ने भी काबीना वजीरा के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती हो। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तिलक महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना। सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।